मैं सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे थे ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरे।

पहला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम पारा सब त्यावह है सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सृजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता पे भुगता जी हों तुद बिन

पढ़ें बहु सिमृत शास्त्र जी। कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी। जो भावे मेरे हर भगवंता, तू आदि पुरख अपरंपर करता जी। तुद जेवड़ अवर न कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। तू निश्चल करता सोई, तुद आपे भावे सोई वरतै जी। तू आपे करह सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी। तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी। जो सब सह का जान होई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैडा साई, जो तो भावै सोई थीसी। जो तू देहे सोई हम पाई रहा, सब तेरी तू सबनी त्याया। जिसनों कृपा करह तिन नाम रतन पाया।

हमरे दुष्ट सबै तुम काब हो, आप हाथ दै मोह बचाव हो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा।

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुवराता। किल बिख सगल देह को हरता, दुष्ट दुखियन को शय करता।

सुने गुंग जो जाहे सुरस न पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकट न तिन नर

ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया।

संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहया भर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खिले सगल जगत

सुख मांगे मुको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

0: चक्कर बकर फिरे चतर चक मानिए पुरतीन
1: चौदह के बिके जग जाप जय जाप
0: आते अनाथ मूरत थाप्यो सबे जय थाप
1: परम रूप नीत मूरत पूरन पुर का पार
0: सर्व विषय रच स्वयं पढ़न पंजन हार
1: काल हीन कलास जुगत का

हरियं करियं नामे अकामे चतुर चक्र कर्ता चतुर चक्र हता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वती चतुर चक्र प्रति चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र माने चतुर चक्र दाने चाचरी चन्न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्म

0: मन प्रणाम गुण गन मुदाम
1: हर पर गंज हर नर प्रभंज
0: अन गन प्रणाम मुन मन सलाम
1: हर नर अखंड बर नर अमंड
0: अन पव अनास मुन मन प्रकाश
1: गुण गन प्रणाम जल थल मुदाम
0: अंशिज अंग आसन अपांग
1: उपमा पार गत मित उदार
0: जल थल अमंड दिस विश अपांड
1: जल

0: अंचिज गाता जिजना बात अंटुट पंडारं खड़िया पार
1: आठ तरम अत डीठ करम
0: अंतरण अनंत दाता महंत
1: हर बोल मना चंत्र प्रसाद क

0: अमृतामृत है,
1: नरनायक है, खलकायक है,
0: विशंबर है, करुणालय है,
1: कृपनायक है, सर्वपायक है।

0: समस्तुल परनासे
1: अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे
0: कामन पेपुते समस्तुल स्वरूपे
1: कुकर्मं प्रणासी सुधर्मं विभूते
0: सदा सच्चिदानंद सत्रन परनासी
1: करिमूल कुनिंदा समस्तुल निवासी
0: अजाए पेपुते गजाए गनी में
1: हरियं करिमूल रही में
0: चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते।

0: साहिब सुन साहिब प्यारे
1: दीन बंधु सन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता
0: काल पाए शिव जी अवसर
1: ताल पाए कर प्रकाश सकल काल का किया तमाशा
0: काल जोगी शिव की ओ वेद।

कृपा में सुख कने कोई न जाने तुमरा ऊंचे ते ऊंचा भगवन सगल समगरी तुमरा सूत्र तारी तुम ते हो ऐसो

तुद्या गैर दास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहु नानक सब तेरी वडियाई कोई नाउ ना जाने मेरा तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुखरास ताको बिगन को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए नरसन परसे आए गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अर सौ कुर सौ झटी है तुर जिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सजन सच्चा पातशाह सिर साहांद साहो जिस पास बैठिया सोही है सब ना दावे साहो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

गुरमुख बिरलै जाने। ये पंक्ति जिस विच सारे शब्द का केंद्री भाव है, भगत जी दसते हैं कि जो मनुख अपने आप नूं गुरु के हवाले करके नाम सिमरदा है, प्रभु वाली प्रभु मिलाप वाली अवस्था नाल उसकी जान पछाण हो जाती है। ये जग उसनों प्रभु की बनाई हुई एक बगीची जापती है।